0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: दस बजकर 8 मिनट है। शुरू की घड़ी का समय एक से सात एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है एक से सात एफएम रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं। तो शर्मिशा करती है आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और वादे के मुताबिक फिर एक बार आज हाजिर हो चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कल, यानी कि जी हाँ कल ही बता रही थी आपको कि नए महीने की पहली तारीख में आप सभी श्रोताओं से फिर से बात होगी और उसी वादे को पूरा करते हुए फिर एक बार आज यानी कि एक नया महीना और नए महीने की पहली तारीख पर हो रही है आपकी अपनी रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ बात और एक ऐसे कार्यक्रम के जरिए बात हो रही है जिसे आप सुनते हैं हर रोज़। और न जाने कितने ही अलग अलग विषयों को लेकर बातें होंगी इस कार्यक्रम में होती आ रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल बात करते हैं एक नए महीने को लेकर। जी हाँ, आज सितंबर महीने का पहला दिन है, पहली तारीख है और भले ही महीना नया है लेकिन इस नए महीने के साथ कितनी ही चीज़ें बदल जाती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, अगर घर की गृहिणी को कभी आपने ध्यान से देखा हो तो उनके रोज़मर्रा के जीवन में नया महीना तो ज़रूर शुरू हो जाता है लेकिन इसी के साथ साथ कई सारी चीज़ें बदल भी जाती हैं। जी हाँ, गृहिणी की बात मैं करूँगी लेकिन उससे पहले उस कैलेंडर के बारे में भी बात करना चाहूँगी जो कि टंगी होती है हर घर के उस दीवार पर, जो दीवार सिर्फ और सिर्फ उसी कैलेंडर के लिए फिक्स्ड होती है। जी हाँ, कैलेंडर का एक नया पन्ना पलट कर हमारे सामने आ जाता है आज के दिन, यानी कि हर महीने की पहली तारीख में एक नया पन्ना हम खोल लेते हैं और वो जो बीता महीना था उस बीते महीने में न जाने कई सारी तारीखें ऐसी थी जिन्हें हमने अलग अलग रंगों से निशान लगा कर रखे होते हैं ना, और हर एक निशान के साथ हमने लिख कर रखा होता है कि ये जो निशान है ये आखिर इस कौन सी चीज़ के लिए है। और पुराने कैलेंडर का जो पन्ना होता है उसमें ऐसे बहुत सी ज़रूरी चीज़ों को हम नोट डाउन करके रखते हैं जो कि बाद में हमारे काम में आ रही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है और महीने की आखिरी तारीख के साथ वो वाला जो पन्ना है जिसे हमने पूरा महीना चलाया था, देखा था, वो जो पन्ना है वो बदल जाता है और फिर से हमारे सामने खुल कर आ जाता है एक नया पन्ना एक नए महीने के साथ। और फिर एक बार उस नए पन्ने में, जी हाँ कैलेंडर के उसी नए पन्ने में, फिर एक बार हम अलग अलग रंगों से उन तारीखों को मार्क कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम नोट डाउन कर लेते हैं जिनकी हमें बाद में ज़रूरत होती है। तो ये तो बात हुई कैलेंडर की, लेकिन इसी के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें बदलती हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़रूरतों के साथ काम आती हैं, आगे बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। तो वो जो कौन सी बदलाव हैं उनके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन फ़िलहाल रुख करते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, आवाज़ अरिजीत सिंह की।

10:17 है, स्टूडियो की घड़ी में संगे आप शर्मिशा है और सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और बात हो रही थी इस कार्यक्रम में नई नए महीने के साथ बदलने वाली चीज़ों को लेकर, और महीना तो बदल गया लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बदल जाती हैं, जैसे कि डायरी का वो पन्ना भी बदल जाता है जिसमें नए महीने के साथ नए हिसाब जोड़े जाते हैं। जी हाँ, अगर हिसाब किताब की बात करूँ तो पिछले पन्ने में जुड़े थे दूध वाले के हिसाब, जी हाँ अखबार का हिसाब, और न जाने इस तरीके के कई सारे हिसाब डायरी के उन पन्नों में नोट डाउन किए जाते हैं। और महीने के आखिर में हिसाब लगाया जाता है कि आखिर दूध वाले को कितने पैसे देने हैं और अखबार के आखिर कितने पैसे जोड़ने हैं। तो इस तरीके के हिसाब किताब के बारे में लिखा जाता है डायरी के हर एक पन्ने में, और महीना बदलने के साथ साथ बदल जाता है डायरी का हर एक पन्ना, और इस तरीके से पन्ने पर पन्ने बदलते जाते हैं, महीने के बाद महीने आते जाते रहते हैं। लेकिन इस तरीके से जी हाँ एक पूरा साल बदलकर नया साल आ जाता है और फिर एक बार शुरुआत हो जाती है नए साल के साथ नई जर्नी। लेकिन साल चाहे कितने ही बदल जाएं, लेकिन अपनों का जो प्यार होता है ना वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि अपनों के प्यार के बगैर आखिर किस तरीके से हम जिए, है ना। और ये जो हमारे और आपके बीच का जो प्यार है ये जोड़ता है हमारे अलग अलग कार्यक्रमों को। जी हाँ, अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए मैं और आप जुड़ते हैं। जी हाँ, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कई तरह की बातें हम साझा करते हैं आप सभी श्रोताओं के साथ, और ये जो प्यार वाला जो सिलसिला है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ एक प्यार भरा नगमा भी फिलहाल सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनवाऊँगी आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना, और इस गीत को सुनने के बाद एक और विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज के खास दिन को लेकर बात करूंगी। तो जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, कार्यक्रम का साथ है पूरे 11 बजे तक।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: दस बजकर 25 मिनट नॉनस्टॉप गपशप के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल याद दिलाऊं आपको इस बार मनाने वाले इस सप्ताह को लेकर, जो कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तौर पर इस सप्ताह को मनाया जाता है। जी हाँ, हर साल

यह सप्ताह मनाया जाता है इसी उद्देश्य के साथ कि लोगों को पोषण से जुड़ी जो जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें फिर एक बार याद दिलाई जाए। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य यही है कि संतुलित आहार, उचित पोषण और स्वस्थ खान पान की आदतों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। ये सप्ताह छात्रों, परिवारों, विद्यार्थियों और समुदायों को ये समझने में मदद करता है कि विकास ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सीखने की क्षमता और समग्र स्वास्थ्य के लिए पोषण आखिर कितना ही जरूरी है। और अगर इससे जुड़े इतिहास की बात करें तो इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 1982 में और तब से लेकर अभी तक 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक इस सप्ताह को मनाया जाता है, लोगों को याद दिलाया जाता है पोषण के बारे में। जी हाँ, दिन भर हम जो भी खाते हैं उसमें आखिर पोषण कितना है, इस बात का ध्यान रखने के लिए, इस बात को याद दिलाने के लिए ये पूरा सप्ताह मनाया जाता है। बातें होंगी और भी इस सप्ताह को लेकर, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

तो बात हो रही थी पोषण सप्ताह को लेकर। जी हाँ, पोषण सप्ताह तो मनाया जाता है अपने खान पान को ठीक तरीके से संतुलित मात्रा में लेने के लिए, और इस बात का ध्यान भी आकर्षित किया जाता है कि पूरे दिन में आप जिस तरीके के खान पान का सेवन करते हैं उसमें संतुलित आहार कितना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पेट भरकर खा तो लेते हैं लेकिन पौष्टिक भोजन आपने किया है कि नहीं, इसके बारे में हमें कई बार पता नहीं होता है, या फिर जानकर भी हम ये सोचते हैं कि ठीक है कभी कभार तो चल ही जाता है। तो पोषण सप्ताह की बात तो ठीक है लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कई लोग हैं कि पूरे साल के लिए पूरा टाइम टेबल बनाकर रख लेते हैं, यानी कि पूरे दिन भर में वो जो भी खाएंगे पूरा ही पौष्टिक खाना उनका रहेगा और थोड़ा भी अपने टाइम टेबल से इधर से उधर नहीं हटने की जो शपथ है उसे वो लेते हैं और मेंटेन भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं, जी हाँ मैंने कहा कोशिश करते हैं, सफल होते हैं ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। और ऐसी भी बात नहीं है कि

लोग इस काम को करने में सफल नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कई बार मिशन से भटका भी तो जा सकता है ना। और भटकना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्यों नहीं है इसके बारे में मैं बस अभी अभी बताती हूँ आपको। और घर से निकलते ही, जी हाँ, अगर शाम का समय है और या फिर दिन में कभी भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो कभी ना कभी कम से कम एक बार के लिए आपकी नज़र जो है, दुष्ट नज़र उस ठेले पर पड़ ही जाएगी, जब अक्सर वो जो ठेले वाला है उसे ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ठेला जिसका है और जिस चीज़ को ठेले वाला बिक्री कर रहा है, कई बार समझ में ही नहीं आता कि आखिर ठेले वाला कौन है और ख़रीदार कौन है। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, क्योंकि इस चीज़ को खाने के शौकीन जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल पता चल चुका होगा कि आखिर मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, फुचका या फिर गोलगप्पा, जी हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी आसानी से आपके दिल को लुभा सकती है। और ये जो ठेले वाला है, फुचका या फिर गोलगप्पा लगाने वाला जो ठेले वाला है, उसे अक्सर हम ढूंढ पाने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उसके ठेले पर लोगों की भीड़ इस तरीके से जमा होती है कि उस भीड़ में आखिर ठेले वाला कौन है, यही कई बार हमें समझ में नहीं आता है ना। और इतने ही चाव से लोग इस चीज़ को खाते हैं, मज़ा लेते हैं, आनंद उठाते हैं। और थोड़ा और अगर हम चलते हैं तो ऐसे बहुत से ठेले, स्ट्रीट फूड हमें दिख जाते हैं, जो बहुत ही आसानी से आपके दिलो दिमाग को लुभाते हैं, और एक बार के लिए आपकी जो नज़र है वो उस ठेले पर पड़ ही जाती है। और चाहे आप जितना भी पोषण का ध्यान रख लें, पूरे सप्ताह पूरे महीने का आप टाइम टेबल बना लेकिन उस टाइम टेबल पर पानी फेरने में ज़रा सी भी देर नहीं लगती है। और इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है भाई वही ठेले वाले और वही वाली नज़र। जब हम बाहर जाते हैं और वही वाली हमारी नज़र जो पड़ती है उस ठेले पर। लेकिन कई बार हम सचेत तो होते हैं, सतर्क तो होते हैं हमारे खान पान को लेकर, और हर समय पोषण की बात करते हैं, लेकिन कभी कभार दिलो दिमाग भी कह उठता है कि भाई हमेशा तो पोषण की बात करते हो, हमेशा पोषण वाला खान पान तो लेते हो, लेकिन कभी कभार इस दिल की भी तो सुन लिया करो। तो कभी कभार इस दिल की भी सुन लेनी ज़रूरी है। और कभी कभी ये जो हमारा जो दिल है ये आखिर क्या कह रहा है, कभी कभार एकाध फुचका या फिर पानी पूरी को टेस्ट करने का दिल जाता है, या फिर कभी कभार एकाध समोसा टेस्ट करने में कोई बुराई तो नहीं है, ऐसा ही कुछ हमारा दिल कह उठता है ना। तो कभी कभार इन चीज़ों का स्वाद लेना तो ठीक ठाक है, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में इन चीज़ों को जितना कम हो सके शामिल करें तो उतना ही बेहतर होता है और उतना ही स्वस्थ रहता है हमारा दिलो दिमाग। तो कई बार दिल कुछ ऐसी डिमांड कर बैठता है जिसको पूरा करना शायद आसान नहीं, लेकिन कभी कभी तो दिल की सुनी जा सकती है ना। तो चलिए, फिलहाल मेरा और आपका दिल तो यही कह रहा है कि एक प्यारा सा तराना सुना जाए, और तराना भले ही आप सुनते रहिए लेकिन पोषण का ध्यान भी आप बिल्कुल तरीके से रखें, और पूरे दिन भर में आप क्या क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इसमें पौष्टिक तत्व आखिर कितना शामिल है, कितना नहीं शामिल है, इसका भी ध्यान पूरे तरीके से रखना ज़रूरी है। तो चलिए, रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर।

शालू आपकी होकर रहे ना रहे, लेकिन एक चीज आपकी सदा के लिए होकर रहती है और वो है हाथ से लिखी हुई चिट्ठी। जी हाँ, जब से हम सब ने डिजिटल युग में कदम रखा है, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी की जो परंपरा है उसे हम सब भूलने बैठे हैं। और इसी बात को याद करने के लिए वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। और उद्देश्य यही है कि जो परंपरा थी एक समय हाथ से लिखी चिट्ठी के जरिए हम सब अपनों तक हमारे दिल की बात पहुंचाते थे, संदेशे पहुंचाते थे, वो जो परंपरा है वो आज डिजिटल युग में कहीं खो सी गई है। और ये जो खोया हुआ समय है वो भले ही समय के साथ साथ

अलग ही जगह बनाई हुई है और इस बात को लोग कभी भी नहीं भूल सकते। भले ही डिजिटल समय में हम आज ईमेल करते हों, टेक्स्ट के जरिए छोटे छोटे शब्दों में एक दूसरे को मैसेज जरूर करते हैं, लेकिन उन चंद शब्दों में क्या हम दिल की सारी कहानी, दिल की सारी बात बयां कर सकते हैं? नहीं ना। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये हमें मलाल रहता है, दुख रहता है कि आज के समय में लोग चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए, चाहे जितनी भी तरक्की करने, लेकिन वो जो परंपरा थी चिट्ठी को लिखने की और एक दूसरे के ज़रिए चिट्ठी के माध्यम से संदेश को आदान प्रदान किया जाता है, खैर किया जाता था, लेकिन आज के समय में ये जो सिलसिला है ये काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को अभी भी जारी रखना चाहते हैं। जी हाँ, डाकिए की बात अगर करें तो डाकिए को आज भी हम सब याद करते हैं। एक समय था जब डाकिया प्रियजनों के डाक लेकर आपके दरवाजे पर आकर हाजिर होता था और अपनों के संदेश आपके हाथ में देकर चला जाता था, और उस संदेश के अंदर, उस लिफाफे के अंदर, उस चिट्ठी के अंदर आखिर अपनों की कौन सी दिल की बात लिखी हुई है, इसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हम छटपटाते थे और इंतज़ार रहता था हमें उस चिट्ठी के खुलने का, कि जैसे ही चिट्ठी खुलेगी और जल्दी से हम अपनों का संदेश पढ़ने वाले हैं। और इसी बात को याद करने के लिए आज के इस दिन को मनाया जाता है। अगर शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो साल 2014 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। बस उद्देश्य यही था कि ये जो पुरानी परंपरा है उसे लोग भुला ना दें। तो ये तो थी चिट्ठी को लिखने की परंपरा, और आज भी अगर पूरे घर में टटोला जाए, ढूंढा जाए, तो हर एक के घर में एक पुरानी चिट्ठी तो ज़रूर मिलेगी। जी हाँ, और हो सकता है वो जो पुरानी चिट्ठी हो आपके दादा दादी के हाथ से लिखी हुई हो, या फिर प्रियजन के हाथ से ही लिखी हुई चिट्ठी है, और वही पुरानी चिट्ठी जब आप खोलते हैं और उस पर जब आप हाथ फिरोते हैं, तो वो जो हैंड रिटन चिट्ठी है, जिनके हाथों के ज़रिए वो चिट्ठी आपके पास रखी हुई है, ऐसा लगता है ना कि वो इंसान जिसकी चिट्ठी आपके हाथ में है, वो इंसान बस आपके बगल में ही बैठा है, वो आपसे बात कर रहा है उस चिट्ठी के माध्यम से। और कुछ देर के लिए ही सही, जब उस पुरानी चिट्ठी को आप दोबारा पढ़ते हैं तो वही पुरानी यादें फिर एक बार ताज़ा हो जाती हैं। तो इस तरीके की कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए ही आज के इस दिन को मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल फॉरगिवनेस डे के तौर पर भी आज के इस दिन को मनाया जाता है। जी हाँ, माफ़ करना और माफ़ी मांगना ये कोई छोटी और आसान बात नहीं है। जी हाँ, गलती तो हम सब करते हैं, लेकिन माफ़ी मांगना या फिर माफ़ कर देना ये एक अलग ही कला है और हर कोई इसे कर भी नहीं सकता। इसीलिए गलती जब हम कर रहे हैं तो माफ़ी भी हमें ही मांगनी चाहिए, और माफ़ कर देने वाले के दिल में अगर ये मलाल रह जाए कि हम माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि गलती तो हमारी थी ही नहीं, है ना, और इस चीज़ को जब तक हम हमारे दिलो दिमाग में बिठा कर रखेंगे तो एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो नफ़रत में बदलने में थोड़ा भी समय नहीं लेती। इसीलिए अपनों के बीच दूरी को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर ही लेना चाहिए। तो फिलहाल स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 10:50 हो रहे हैं और हमारे और आपके बीच में बिल्कुल भी कोई भी दूरी नहीं है, क्योंकि हर दूरी को मिटा देती है हर एक अलग अलग कार्यक्रम, और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से होती है बहुत सी बातें जो कि फिर एक बार जोड़ देती है हमें और आपको। तो चलिए एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

दस बजकर 55 मिनट होने को है, यानी कि नॉन स्टॉप गपशप का सिलसिला करना होगा यहीं पर समाप्त। लेकिन जाने से पहले किशोर कुमार आशा भोंसले की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वाले के लिए छोड़े जाना चाहती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द, समय रहेगा 11:10 और लेकर आऊँगी आप सभी के लिए कार्यक्रम लो आगे उनकी याद। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 100.1 FM गोल्ड। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 107 FM रेनबो के साथ। सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप।

0: कदम, कदम बहुत अच्छी लड़किया से, उके उके बर्बाद करते दिल चाहे ना, लेकिन चून जमीन नमा के बीच बेना, मुझे और रुपया चाहिए, और रुपया चाहिए, जमीन नमा चाहिए, नहीं तो 10 ठो नया बाथेर बालू सप्लायर कॉन्टैक्ट कैंसिल हुई जाबे, नहीं तामी होते दीते दीबे ना, राजा सिंह का ख्वाब अभी तक टूट नहीं, और जमीन के लिए मैं आज शैतान भी बन सकता हूँ।
1: बाबू
0: देवले, तो कि बड़ा आदमी होते कि बहुत बहुत रुपया कमाते इच्छा करे ना,
1: टाका कार ना साई बाबू, टाका साई बोल रही तो मोरा पेटे थाकी थे आपनर का से आसी।
0: अरे ले ले ले, शराब का शराब का
1: शराब,
0: रंगीन शराबे बहुत बहुत रंगीन ख्वाब देखते पर भी का बेटा का बहुत मौज करेगा, प्रथम आमियो ख्वाब दिखता, तुम्हें झपड़ी बनाबार जुन्नो ना, महल महल महल बनाबार जुन्नो, आज हमें महल बनी है जी।
1: की करे बना लेन बाबू,
0: की करे, कब्जी चोरे राजा सिंह सब करते पारे, ये बेईमान दुनिया राजा सिंह होते गले शैतान बनते हो शैतान। हमार दोस्त जे अमा के बालू खदाने इन्हें छिलो, जे ए बालू खदाने मालिक छिलो, तके अभी एक दिन सुनें अपना के स्टैम्प पेपर सिग्नेचर करते हो बे।
2: तुम्ही बोल चुकी राजा सिंह?
0: हाँ बोल ची।
2: ची ची ची ची ची, अमी तो के विश्वास करे के चिलाम।
0: विश्वास? अमी विश्वास करे चक्कू के। ए अमार बात खूब सुने
2: राजा सिंह।
0: हाँ
2: बोल चुके तुम्ही।
0: सिग्नेचर करें नहीं तो
2: ठीक है ची।
0: करें
2: ठीक है ची, सही कर दीजिए।
0: करें
2: तो विश्वास जी मौजूदा आज तुम्ही दिले तार फल तुम्ही अवश्य ही पाबे, भगवान तुम्हें क्षमा कर देना।
0: भगवान
2: नहीं ना,
0: भगवान बाप बाप, बहुत अच्छा सिग्नेचर
2: एकी एकी एकी।

तो दोस्तों बातें हो रही है दिन का तड़का में, भाई फिल्मों की बातें हो रही है। अभी सनी देओल और की बटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2 इन दोनों सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रही हैं। और ये दोनों फिल्में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, उसके बाद से काफ़ी तूफान मचा रही है। खासकर आवारापन 2 की अगर बात करें तो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। और टॉक्सिक की अगर बात करें तो टॉक्सिक रिलीज़ होने के 2 दिन बाद उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली है। इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी है? अगर नहीं देखी है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। फिलहाल हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार दोस्तों, 107 FM Rainbow के अंतर्गत परियोजना प्रस्तुति के एक नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। क्या आपके घर में या मोहल्ले में कोई बढ़ई, दर्जी, लोहार, कुम्हार, मोची या नाई या कोई पारंपरिक कारीगर है? अगर हाँ तो आज की जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। दोस्तों, भारत के में सदियों से हमारे कारीगर अपने हुनर से समाज की ज़रूरतें पूरी कर दिया है, लेकिन बदलते समय के साथ कई पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक ट्रेनिंग, बेहतर उपकरण, सस्ता लोन और अपने काम को बड़े बाजार तक पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके हुनर के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है। इस योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी, नाई, धोबी, मोची और कई अन्य पारंपरिक कारीगर। बात करते हैं अब इसके फायदे की। पात्र लाभार्थी को विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाता है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक की सहायता भी उपलब्ध है और अगर अपना

इस खूबसूरत गाने के साथ ही दोस्तों एक वेदर वार्निंग भी मेरे हाथ में लग चुका है। अभी दिन का तड़का में बताया जा रहा है कि मालदा के कुछ एक जिलों में, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में मध्यम से हल्की बारिश होने की गुंजाइश बताई जा रही है। साथ ही साथ बादल गरजने के साथ साथ तेज हवाएं भी चलेंगी ऐसा बताया जा रहा है। और तेज़ हवाओं की स्पीड, जी हाँ, 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हवाएं चलने वाली हैं अगले 2 से 3 घंटों में। तो ऑरेंज अलर्ट आ चुका है मालदा डिस्ट्रिक्ट के लिए। फिलहाल वहाँ से जो भी दोस्त हमारे सुन रहे हैं या फिर आपके रिश्तेदार जो भी हमें सुन रहे हैं, आपके रिश्तेदार अगर दोस्त संगी साथी कोई भी अगर मालदा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो फिर उन्हें आगाह कर दिया जाए। बता दीजिएगा ज़रूर कि जब भी बाहर निकले, बाहर जब भी निकले तो पूरी तैयारी के साथ बाहर निकले ताकि बारिश में फंसने के जो आसार हैं वो थोड़ी कम रहे। और हवाएं, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी तो वहां से भी बचना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं अगला गाना।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
3: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने। लिखा है,
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
3: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं,
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
3: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी। श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
3: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
3: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए। वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
2: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
3: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
2: जी।
3: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
2: जी।
3: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
2: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
3: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
2: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
3: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
2: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
3: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
2: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीने उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए, लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली। उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
3: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
2: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
3: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
3: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माय नेम।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
4: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
5: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree,

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है, और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी

0: 1842 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक

0: Alice Kobuiti.
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh,

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।

0: समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
1: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
2: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुई। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ 107 एफएम रेनबो पर लेकर छाया लोग।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग, छाया लोग 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग, छाया लोग।
0: और आज है मंगलवार का दिन, यानी कि प्यार की बातों का दिन। प्यार की बात और शाम का वक्त हो तो दिल अपने आप थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब इंसान अपने लिए कुछ पल निकालता है तो पता नहीं क्यों कुछ चेहरे याद आने लगते हैं। कोई जो अभी पास है, कोई जो बहुत दूर है, कोई ऐसा भी जो शायद जिंदगी में अब है ही नहीं, लेकिन यादों में आज भी बिल्कुल पास बैठा हुआ है। इसीलिए तो हम हर मंगलवार को लेकर आते हैं आप सभी के लिए
2: प्यार भरे नगमे।
0: जी हाँ, प्यार भरे नगमे। प्यार की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हमेशा बड़े बड़े शब्दों में नहीं मिलता। ये हर कहानी में कोई राज, राज अपनी सिमरन के लिए ट्रेन के पीछे भागता है। हर प्यार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसा नहीं होता, जहाँ सरसों के खेत हो, विदेश की यात्रा हो और आखिर में पूरा परिवार मान जाए। असल जिंदगी में प्यार बहुत साधारण होता है।

0: तो बात हो रही थी कि प्यार कैसा होता है भाई असल जिंदगी में, इस बारे में चलिए बातें करेंगे। और हमारे पहले कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो देखते हैं कौन है। हेलो
1: जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाइन क्लासिक्स में, सॉरी प्यार भरे नगमे में। जी बिल्कुल, क्या है कि दोनों प्रोग्राम्स मेरे दिल के बड़े करीब हैं, तो फिर हो जाता है।
1: और आप ही का मतलब बोली दोनों प्रोग्राम में होता है ना, तो आपसे मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, तो प्यार तो मनुष्य का एक जीवन का बहुत ही सुंदर चीज है
0: जी,
1: तो प्यार तो सभी को एक दूसरे के साथ।
0: आपके लिए प्यार कैसा, जैसा फिल्मों में दिखाता है वैसा असल प्यार होता है या कि बहुत ही साधारण सा होता है प्यार?
1: प्यार तो फिल्मों की तरह नहीं होता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जैसे आप अभी तुरंत ही बोल देगी शाहरुख खान परसों के खेत में गए और उसके परिवार के साथ हिल मिल गए, तो होता है ऐसा बात नहीं, नहीं होता।
0: कई बार बोला जाता है ना कि कुछ मेरी लव स्टोरी है, बहुत लोगों को बोलते सुना है मैंने कि मेरी लव स्टोरी तो बिल्कुल फिल्मी है या हमारी लव स्टोरी तो बिल्कुल फिल्मी है।
1: फिल्म के मतलब फिल्म पर ही आधारित लोगों के जीवन का प्यार होता है।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: वैसे देखिए दीदी, कॉलेज मतलब फिल्म में दिखाता कैसे है कि कॉलेज में एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मिल मतलब प्यार का इजहार करते हैं, तो कॉलेज लाइफ नॉर्मल लाइफ में भी उसी तरह ही होता है, स्कूल लाइफ में भी होता है, कॉलेज लाइफ में भी होता है, तो प्यार का तो मतलब शुरुआत वहीं से होता है
0: जी,
1: और फिल्म में भी उस तरह ही दिखाया जाता है।
0: बोली
1: और मतलब प्यार मिलना ना मिलना तो फिर बाद के बात है, जैसे कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में प्यार रहता ही है, और जब मतलब सांसारिक जीवन में पहुंच जाता है, जैसे माता पिता के पास जब ये बातें पहुंच जाती है तब थोड़ा क्लिष्ट आ जाता है। जी, फिलहाल तो प्यार का इजहार मतलब रहते ही कर देना चाहिए, ताकि उसका प्यार सफल हो या ना हो तो बात की बात है।
0: तो आपके हिसाब से आजकल के बच्चे या फिर आजकल की जेनरेशन जिस तरह से प्यार करती है वो सही है, आपको अच्छा लगता है, या फिर पहले जिस तरह हुआ करता था उस तरह का प्यार का इजहार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए दीदी, दोनों सिचुएशन में मतलब पहले के प्यार भी सही है और आज के प्यार भी सही है,
0: पर आज का प्यार तो कितने सारे कैटेगरीज में बढ़ चुका है ना।
1: कुछ कैटेगरी, हाँ कैटेगरी में बदल चुका है। अभी देखिए दीदी, पहले प्यार के लिए अर्थ का प्रयोजन नहीं पड़ता था
0: जी,
1: अब लेकिन प्यार के लिए आप मानिए ना मानिए अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। जो मतलब मान लीजिए जो जितना अच्छा बाइक या कार दिखाएगा उसके प्रति मतलब लड़कियों का चाव ज्यादा हो जाएगा,
0: तो वो असली प्यार क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, इस पे हम आगे नहीं बात करेंगे, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे, किसी और से बात करेंगे। आपने बहुत कुछ अपना ओपिनियन दे दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे पारस जी। और आप बताइए फटाफट से गाना कौन सा सुनना चाहेंगे, और हमारे जो अगले कॉलर हैं जो भी

0: कॉल करने वाले हैं, आने वाले कॉलर्स जो हैं उनके लिए मेरा यही है कि सवाल यही रहेगा जो पारस जी से जहाँ पे मैंने एंड किया था कि आजकल का प्यार बेहतर है या फिर पुराने टाइप का प्यार, मतलब प्यार में दिखावा क्या जरूरी होता है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पारस जी पहले आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आप स्वयंवर पिक्चर का गाना सुना दीजिए, मुझे छू रही है तेरी गर्म सांस से।
0: एकदम चलिए सुनवाते हैं आपको गाना और मिलते हैं फिर। ओके
1: थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप करके। हैव अ नाइस डे।
0: गुड नाइट। गुड नाइट, अच्छे से रहिएगा। तो बताइए आजकल के दिखावे वाला प्यार या फिर पुराने टाइम का प्यार, मतलब प्यार में दिखावा जरूरी है या नहीं है, अच्छी बाइक, अच्छा फोन, अच्छा घर या फिर बैंक बैलेंस कितना जरूरी है। फिलहाल फोन लाइंस खुली हुई हैं, 2213-1341 है फोन नंबर, और पारस जी ने जो रिक्वेस्ट किया था चलिए सुन लेते हैं वो गाना।

0: तो इस खूबसूरत से गाने के बाद चलिए हमारे अगले कॉलर को हम ले लेते हैं ऑन एयर। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डायलॉग में।
1: मैं अरुण लोग बोल रहा हूँ हावड़ा से।
0: जी अरुण, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
1: सब ठीक है जी, शरीर ठीक है। जनवरी में तो शरीर खराब हुआ।
0: जी जी जी बताया था।
1: अभी तो ठीक है, काम फाम करते है। अच्छा सुनिए।
0: हाँ जी बताइए।
1: मैं तो माने आज 64 हो गया, मैं 50 बरस पहले हम प्यार किया था।
0: अच्छा।
1: लेकिन उसका साथ शादी नहीं हुआ।
0: ओके, कोई बात नहीं।
1: 14 बरस माने बाद में हम माने प्यार किया था एक लड़की से।
0: अच्छा।
1: वो लड़की का वो कहाँ चला गया, वो तो किराए पर थे हमारा पास में, हमारा माने बगल में, और कहाँ पर चले गए ये हम माने मालूम नहीं।
0: कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा।
1: वो 50 वर्ष का पहले जो प्यार है ना, वो खांटी प्यार है।
0: अच्छा।
1: चलिए और एक बात, वो जो गाना सुना है ना पहले, वो जो
0: मुझे छू रही है गर्म तेरी सांसें जी,
1: हाँ वो बहुत बढ़िया वाला गाना है।
0: थैंक यू। तो पारस जी को थैंक यू हम लोगों की तरफ से, इतना सुंदर सा गाना चूज करने के लिए।
1: वो बहुत बढ़िया वाला गाना है।
0: तो पारस जी थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी और उदा की तरफ से भी आपको इतना खूबसूरत सा गाना पसंद करने के लिए।
1: आपसे गाना रिक्वेस्ट करूंगा।
0: हाँ जी बोलिए।
1: वो अच्छा लगता है हमको।
0: अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: ये रात भीगी भीगी वो गाना।
0: ओके।
1: मानना दे लता मंगेशकर।
0: जी जी जी जी, चोरी चोरी फिल्म से। चलिए सुनवाते
1: हैं।
0: हाँ।
1: वो बहुत बढ़िया गाना है
0: जी, सच में बहुत बढ़िया गाना, और अभी जैसा वेदर है बिल्कुल उसके लिए एप्रोप्रिएट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए वापस मुलाकात होगी। तो औरुप दा ने भी शेयर की अपनी लव स्टोरी, तो फिर और सुनना चाहते हैं ये रात भीगी भीगी, तो चलिए सुन लेते हैं।

0: सूर्य की घड़ी समय बता रही है, 7:30 ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी फिलहाल हमारे अगले कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्कार,
1: बिहारा से अनिमेश भट्टाचार्य जी बात कर रहा है।
0: जी अनिमेश, कैसे हैं, सब ठीक ठाक?
1: सब ठीक है, चल रहा है। अभी को तो बारिश हो रहा है बीच बीच में
0: जी,
1: लेकिन बारिश अभी तो कुछ कम है। अगस्त में जो बारिश हुआ 400.24 मिलीलीटर बारिश हुआ कोलकाता में
0: जी,
1: जरूरत से कम है। ये होना चाहिए था कि 400.72 होना चाहिए था, 400.72 मिलीमीटर होना चाहिए था।
0: अच्छा, ओके।
1: लेकिन 2025 में हुआ था 400.64 मिलीमीटर
0: जी।
1: तो आज का कार्यक्रम तो पहले से ही सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच। बताइए आपका काम कैसे चल रहा है, स्कूल कैसा है, स्कूल में सब ठीक ठाक चल रहा
1: है? अच्छा ही चल रहा है, लेकिन आज तो ठीक तरीके से क्लास नहीं हो पा क्योंकि बहुत तेजी बारिश हो रहा था ना
0: जी। जी,
1: इसीलिए कुछ कठिनाई हुआ, लेकिन हम तो पहुंच गए, समय से पहुंच गया, लेकिन इतना ज्यादा पानी होता ना उधर, तो बहुत मुश्किल हुआ।
0: जी बिल्कुल सही बात है, बताइए आज के टॉपिक के बारे में कुछ बताइए फिर।
1: जी मेरे ख्याल से जो अभी जो प्यार होता है ना, ये 2 दिन का प्यार है, 4 दिन का 14वीं, फिर आगे रपक जिसके पास बहुत सारे चीज है, एक्सपेंसिव चीज है, उसके देखे प्यार करता है, लेकिन वो प्यार अच्छा नहीं है। वो प्यार जो है वो देखा हुआ है, वो 1-2 दिन रहता है और उसके बाद तो चल जाता है, छूट जाता है
0: जी।
1: वो उसे हम प्यार नहीं कह सकते। प्यार वो था जब हृदय से था, असली प्यार था, जो वो धन दौलत के पर ज्यादा नहीं निर्भरशील था, उनका जो था हृदय का जो अनुभूति था
0: जी,
1: उसे लेके वो आगे चलते थे, जिंदगी बिताते थे, एक साथ रहते थे और परस्पर को जो मदद कर रहे थे ना, सुख पर दुख पर सब कुछ बांट लेते थे, वही असली प्यार था।
0: सही बात,
1: अभी तो उतना अच्छा तरह तो नहीं देखता है।
0: सही बात, ठीक
1: है। मैं गाने की गुजारिश करूंगा
0: जी अनिमेश।
1: 20 साल पहले एक फिल्म था, उसमें लता मंगेशकर जी ने एक गान उन्होंने गाया था कि कैसा है सारे हस्ती नजारे, एक गाना आपका पास है तो अच्छा, इसको हम डेडिकेट करना चाहती हूँ पहले आपको।
0: थैंक यू सो मच।
1: और फिर प्रभाती भट्टाचार्य जी और एफएम रेनबो का सभी लिसनर्स को अब ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ
0: जी। शुक्रिया बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वापस मुलाकात होगी आपसे, वापस बातें होंगी। थैंक यू सो मच अपनी बातें कहने रखने के लिए, गुड नाइट। फिलहाल ये थे अनिमेश दा और सुनना चाहते हैं कहते हैं सारे हंसते नजारे, तो चलिए सुन लेते हैं फिलहाल ये गाना।

0: दोस्तों, आपको नहीं लगता कि असल जिंदगी का प्यार कई बार बहुत साधारण होता है? घर पहुंचकर मैसेज कर देना, खाना खाया, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो, इतनी देर तक काम मत करना। और जनाब, अगर कोई रोज आपको ये बातें पूछता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है मामला सिर्फ सामान्य बातचीत ना हो। वैसे प्यार में सबसे पहले जो चीज बदलती है वो इंसान का मोबाइल होता है। पहले फोन सिर्फ फोन होता था, फिर अचानक वो एक इमोशनल मशीन बन जाता है। नोटिफिकेशंस आया तो दिल खुश, मैसेज आया तो मुस्कान, रिप्लाई नहीं आया तो दिमाग में इन्वेस्टिगेशन शुरू। ऑनलाइन थे फिर रिप्लाई क्यों नहीं आया? और यही वो जगह है जहां बॉलीवुड का रोमांस खत्म और सीआईडी शुरू हो जाती है। जी हाँ, फिल्मों में शाहरुख खान बस बाहें फैलाते हैं और हवा चलने लगती है। असली जिंदगी में कोई बाहें फैलाने से पहले 10 बार सोचता है सामने वाला कंफर्टेबल भी है या नहीं। फिल्मों में हीरो कहता है मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, असल जिंदगी में प्यार कहता है तुम आराम करो, मैं आज खाना ऑर्डर कर दूंगा। और सच कहे तो दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरा वाला ज्यादा काम आता है, क्यों है ना। फिलहाल हमारे एक बहुत ही प्यारे से कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं और नया ले लेते हैं उनको। हेलो
1: हेलो पापिया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: आप कैसी हैं पहले बताइए हमें।
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं ये बताइए। और सब श्रोताओं को अपना वो बड़े

0: कोई स्पेशल इंट्रोडक्शन दीजिए।
1: जहाँ जाता हूँ होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
0: जी श्याम जी, कैसे हैं सर? तबीयत ठीक है?
1: बिल्कुल, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपका प्रोग्राम छोड़ता नहीं हूँ कभी। और आप आए और प्रोग्राम पे मैं ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, और लाइन मिल भी जाती है।
0: बस ये जुड़ाव है हमारा और क्या।
1: बिल्कुल, प्यार है, प्यार है, इसीलिए सब कुछ बनता है।
0: जी बिल्कुल, जल्दी से ठीक हो जाइए एकदम।
1: अच्छा जी,
0: ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम में एकदम आप फुल ऑन एनर्जी में हमें सुनाई पड़े।
1: अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। और आज तो आपने जो टॉपिक रखी है बहुत अच्छी लगी मुझे।
0: धन्यवाद।
1: तो ऐसा है काव्या जी, हमारा तो प्यार 1974 का है जो मेरे साथ है। और आप तक निभा रहे हैं बहुत प्यार के साथ, और अच्छी तरह से हैं हम, बहुत अच्छा तालमेल है हमारा
0: जी।
1: और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी जैसी पत्नी भगवान सबको ही को दे।
0: बिल्कुल,
1: हमारा प्यार जैसा है सबको मिले ऐसा,
0: एक अच्छा साथी होना, प्यार मिलना सबको ही रिजर्व करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो गीत मैं सुनाना चाहता हूँ, हमारे पाली में एक हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हमारे हैं
0: जी,
1: यशोदा। ये यशोदा के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ, और बाकी सभी श्रोताओं के लिए, और आपके लिए भी।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया।
1: मैं सभी को कहता हूँ, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, ये गीत हमें सुनना है। और सभी, ये गीत बहुत प्यारा है
0: जी,
1: सभी साथी सुने, बहुत मजा आएगा
0: एकदम।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, वापस मुलाकात होगी। तो ये थे श्याम जी, और बताया अपने प्यार के बारे में, फिर और सुनना चाहते हैं, कहते हैं सारे हंसते नजारे, तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना।

0: तो चलिए दोस्तों अगला कॉल फटाफट ले लिया जाए। हेलो
1: जी, नमस्कार भाभीया जी।
0: हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है छाया लोक में।
1: जी मैं मोहम्मद नासिर दरभंगा बिहार से।
0: जी नासिर जी, वेलकम बैक छाया लोक में। छाया लोक, छायन क्लासिक से सीधे छाया लोक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए हमें कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया, क्या करें, टाइम निकालना नहीं बल्कि ये बेसब्री होती है आपसे बात करने के लिए। ये बहुत कोशिश करने के बाद संयोग है, खुशकिस्मती है हम लोगों की कि फिर से बात करने का मौका मिल जाता है।
0: जी बिल्कुल, हमारे भी खुशकिस्मती है, ये मेरे लिए भी खुशकिस्मती की बात है कि आप लोग सब इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं हमसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल पापिया जी, बिल्कुल
0: हमसे, हमारी आवाज से।
1: जी बिल्कुल
0: जी, बताइए आज के विषय पर जो बातें हो रही थी, बताइए। हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कुछ प्यार के बारे में, तो आजकल का प्यार जो होता है वो कुछ अलग हो गया है, पहले प्यार का डेफिनेशन कुछ अलग था।
1: बिल्कुल 100% इसलिए कि पहले जो लोग प्यार करते थे तो वहाँ पे इस चीजों को लोग नजरअंदाज करते थे कि उनके खानदान कितने हाई क्वालिटी के हैं, या फिर लड़की कितना ज्यादा मेच्योर्ड है, या फिर कितनी खूबसूरत है, या फिर क्या है। वो प्यार जो होता था उस वक्त में पापिया जी, तो मैं देखा करता था कि दिल से दिल को प्यार हुआ करता था, न कि और किसी दूसरे चीज से प्यार हुआ करता था।
0: जी।
1: मेरा भी एक वक्त था 1984 का वक्त था जब मैंने प्यार किया था। मैं सच्ची दिल की बात बता रहा हूँ, तो प्यार मैंने सच्चे दिल से किया था, नो डाउट। लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, हमारे जो फादर या हमारे मदर या फिर हमारे जो पेरेंट थे उनको उसको सक्सेस नहीं करा सके, अरेंज नहीं करा सके।
0: अच्छा।
1: और दूसरी जगह उनकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत थी पापिया जी। और अभी के जनरेशन की जो मैं देख रहा हूँ, जो बच्चे प्यार करते हैं, मैं देखता चला आ रहा हूँ, तो उसमें ये चीज देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं नजर आता है कि हाँ सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, न कि हमें उससे किसी दूसरे चीज से मोहब्बत होनी चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि हम एक से मोहब्बत कर रहे हैं और उसके अलावा फिर दूसरे से भी मोहब्बत कर रहे हैं।
0: उसको बेंचिंग बोलते हैं, मतलब आजकल की भाषा में, आजकल के टर्म्स में बेंचिंग बोलते हैं कि भाई एक से प्यार कर रहे हैं ठीक है, अगर ये इसके साथ चल गया तो ठीक है, अदरवाइज दो तीन लोगों को हम बैठा के रखेंगे।
1: तो ये नहीं होना चाहिए, प्यार जीवन में एक बार होता है। साथी तो बहुत सारे हो जाते हैं, दोस्त तो आपके बहुत सारे हो जाएंगे, नो डाउट। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, सारे लोगों से हमें मोहब्बत है, प्यार है और हमारी अखलाक है, लेकिन वो जो प्यार एक होता है, जो जीवन भर का प्यार होता है, जीवन साथी हम जिसे बनाना चाहते हैं, वो प्यार एक बार ही होता है, दोबारा वो प्यार नहीं होता है। तो मैं अपनी के जनरेशन के सारे लोगों से मैं यही अपनी तरफ से इल्तजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्यार आप सच्ची मोहब्बत कीजिए, जिससे भी प्यार कीजिए सच्ची मोहब्बत कीजिए, और बिना किसी सेल्फिश जिसे कहते हैं, किसी मतलब से कोई मतलब मत रखिए कि हाँ हमें इससे ये बेनिफिट है या फिर इससे ये बेनिफिट है, वो नहीं होनी चाहिए। प्यार सच्ची होनी चाहिए और दिल से होनी चाहिए।
0: जी।
1: यही मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे घर में भी बच्चे हैं और मेरे भी लड़के हैं जो प्यार कर करके शादी करना चाहते हैं, तो मैंने भी देखा कि उनकी प्यार सच्ची है, मैंने उनको अरेंज कर दिया।
0: चलिए बहुत तो अच्छी बात, मतलब आपके जीवन में जो नहीं हुआ एटलीस्ट आपने बच्चों के साथ वैसा कुछ नहीं किया।
1: जी, कुछ नहीं किया।
0: बहुत अच्छी बात है ये,
1: बहुत अच्छी है। जी
0: उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको।
1: शुक्रिया। और एक्सेप्ट करना भी चाहिए, मैं अपनी तरफ से ये भी कहूँगा सारे पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चे खुश है किसी के साथ शादी कर करके खुश है, तो आप बिल्कुल उनकी खुशी को जो है पूरी नहीं,

0: सेव कीजिए और उसमें किसी तरह का कोई लालच मत रखिए, किसी तरह का कोई भी सेल्फिश बात नहीं होनी चाहिए। अगर सच्ची मोहब्बत वो कर रहे हैं तो उनको अरेंज कर करके आप शादी कर दिए, ताकि किसी दूसरा चीज करने का बच्चे को नौबत नहीं आए। जो अभी जो देखने के लिए बहुत सारी चीज मिल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पेरेंट के इनकार करने के वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर बहुत सारा इस तरह का घटना भी घट जाता है जो नहीं होना चाहिए
1: जी।
0: तो मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अगर बच्चे आपके सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप बिल्कुल दिल से उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको अरेंज करा करके शादी करा दीजिए, ताकि आपके जीवन भी खुशदाय हो और बच्चे भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी आगे गुजार सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच नासिर जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी मेरा गाने का बोल है शुरू हो रही है प्रेम कहानी, और फिल्म का नाम मैंने बताया आपको
1: जी, फिल्म का नाम है दूध का कर्ज।
0: दूध का कर्ज जी, गाने के बोले शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
1: तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेम कहानी को।
0: ओके ओके, थैंक यू
1: सो मच, वापस मुलाकात होगी आपसे। गुड नाइट। तो ये थे मोहम्मद नासिर जी, और सुनना चाहते हैं दूध का कर्ज से अगला गाना, तो चलिए सुनते हैं।

0: गिफ्ट्स बहुत है, फ्लावर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सरप्राइजेज हैं, सोशल मीडिया पर रोमांटिक पोस्ट है, लेकिन किसी ने अपनी कहीं आपकी कही हुई छोटी सी बात अगर महीनों बाद भी याद रखी है तो उसे बड़ा सरप्राइज शायद कुछ नहीं। कभी आपने कैजुअली कहा है कि मुझे बचपन में ये बहुत पसंद था और महीनों बाद वही चीज़ आपके सामने रख दी हो, बस वही दिल कहता है अच्छा तो इस इंसान ने मेरी बात सच में सुनी थी। और यही छोटी बातें रिश्तों को खास भी बनाती हैं। फिलहाल चलिए हमारे अगले कॉलर को फटाफट ले लेते हैं ऑन एयर। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार,
1: मैं जीतू बात कर रहा हूँ।
0: जी जीतू कैसे हैं, सब ठीक है?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, और बारिश का मौसम है तो बस थोड़ा सा है नरम गरम सर्दी खांसी।
0: कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाइए जल्दी से। ओके
1: ओके जी, बिल्कुल आप लोगों का मतलब ये प्रोग्राम सुनते हैं और अच्छा लगता है, और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी मतलब स्वस्थ होना और मतलब आपका प्रोग्राम में मतलब जुड़ेंगे, है ना यू ही?
0: एकदम मतलब तबीयत खराब होने की वजह से भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी।
1: थैंक यू जी, और रात का जो आप प्रोग्राम कर रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब गाने भी बज रहे हैं एक से एक
0: जी।
1: और तो आज का जैसे कि आप जैसे टॉपिक के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि प्यार मोहब्बत जो होते हैं, जैसे कि प्यार तो सभी अपने फैमिली से तो करते ही है, और कई तरह के ही प्यार होते हैं, है ना, भाई बहन का प्यार
0: जी।
1: तो अभी हाल ही फिलहाल ही रक्षाबंधन गया है, तो भाई बहन का प्यार था उस समय, और घर का जो माता पिता का है, फैमिली का, तो वो प्यार तो होता ही है। और बाकी है जो है ना, जैसे कि बोलते हैं
0: इतना शर्माइए मत,
1: दोस्ती वाला प्यार होता है,
0: दो इतना शर्माइए मत। बताइए तो,
1: बस ये मतलब प्यार के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा, है ना। और
0: आजकल की जनरेशन के प्यार के बारे में बताइए, आप भी यंग हैं, ठीक है, आपकी भी उम्र कम है मेरे ख्याल से, तो आप देखते हैं कि आपसे आपकी उम्र के या फिर आपके कम आपसे छोटे जो हैं भाई बहन या फिर उस स्टूडेंट्स या फिर जो भी कहेंगे स्कूल के कॉलेज के बच्चे जो हैं वो जिस तरह का प्यार आजकल करते हैं, कई सारे कैटेगरीज में बढ़ चुका है अब प्यार, प्यार प्यार न रहेगी अब कैटेगरीज में बढ़ चुका है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में?
1: बिल्कुल जी, हम देखें जैसे कि आजकल तो होता है कि जैसे कि पहले का होता था कि उम्र के साथ साथ एक होता था ना कि मतलब
0: मैच्योरिटी आती थी
1: प्यार होना, हाँ मतलब, और आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि कम उम्र में ही जो है ना स्कूल कॉलेजों में मतलब लड़का लड़कियां जो होते हैं, है ना, प्यार मतलब करने लगते हैं, तो हम आजकल न्यू जनरेशन जो बोलते हैं हम लोग जेन जी, तो इसमें ज्यादा ही हो रहा है अभी के समय में
0: जी।
1: तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा इसके बारे में, और एक जो बोलते हैं छोटी सी शायरी है मैं सुनाना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल, इरशाद इरशाद।
1: सिर्फ तेरे प्यार में जीने की ख्वाहिश है तेरे बिन इन, सिर्फ तेरे प्यार में जीने की ख्वाहिश है तेरे बिन इन, सांसों का कोई मोल नहीं है, सांसों का कोई मोल नहीं है, क्या नाम दोगी मेरे इस पे बे इंतहा इस। जो जो मतलब ये सारी उन लोगों के लिए है कि जो मतलब जैसे कि प्यार कर रहे हैं, है ना, या फिर प्यार कर चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं शायरी थोड़ा सा लिखा हूँ।
0: बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच जीतू कॉल करने के लिए, आपने कॉल किया और बातें की, हमने अपने ओपिनियंस रखे। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब जाने का वक्त हो चुका है।
1: बिल्कुल जी, और फिल्म का नाम है गोपी किशन, और गाने के बोले छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे भीगी रात में।
0: क्या बात है। चलिए आप
1: जो भीगा भीगा मौसम है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो बारिश का मौसम मुझे मतलब इस तरह का मेरा फेवरेट सॉन्ग है बारिश का।
0: अच्छा अच्छा है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और जल्दी से ठीक हो जाइए, अगली बार जब मुलाकात होगी तब एकदम सुनूंगी कि एकदम मैं फिट हूँ, ठीक है? अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए।
1: थैंक यू,
0: बाय बाय, गुड नाइट। तो ये थे जीतू जी, जो सुनना चाहते हैं छतरी ना खोल बरसात में, और इस गाने के साथ ही मैं पाबिया भी लेती हूँ आप सभी से विदा प्यार भरे नगमे से। मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और समय कुछ और बात और गीतों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ छाया लोक के साथ, क्योंकि थोड़ी ही देर में यानी कि 8:02 पर आपके लिए आपका एंटरटेनमेंट करने आएंगे रोशन बरार का, तब तक के लिए बने रहिए।

तो दोस्तों, जब कोई आपकी इतनी छोटी छोटी बातों को याद रखता है तब समझ आता है कि सामने वाला सिर्फ आपको सुनता नहीं, आपका ध्यान भी देता है। और प्यार में अटेंशन शायद सबसे महंगा गिफ्ट है आजकल।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 FM रेनबो पर एक बार फिर छाया लोक लेकर हाजिर हूं। मैं आपका दोस्त रोशन मुरारका अभी से लेकर 9 बजे तक रहूंगा आपके साथ।

दोस्तों फिलहाल मैं तो भाई डॉन नहीं हूँ, मैं आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका हूँ, जो आपके लिए आपकी पसंद की गीत सुनवाने के लिए 9 बजे तक हाजिर रहूंगा। नंबर आपको फिर से बता देता हूँ या पहली बार आज बता देता हूँ, 2213-1341 नंबर है हमारा, डायल कीजिए अपनी पसंद के गीत के साथ। और जब तक आप आते हैं तब तक सुनिए ये गीत।

दोस्तों, किताबें तो आपने भी बहुत सी पढ़ी होंगी, लेकिन फिलहाल आप सुनिए ये साहिबा क्या कुछ कहना चाहती है। और वैसे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का 2213-1341 पर, आपके फोन कॉल्स का इंतजार बेसब्री से कर रहा है आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका। और तब तक ये साहिबा की बातें सुन लीजिए।

0: चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2213-1341 पर कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: है, नमस्कार दादा।
0: नमस्कार,
1: हमें विमल मित्र बोल छे राजबुढ़ा ठोकली थे।
0: कैसे हैं?
1: हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं दादा?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: आपका पास कहोना प्यार है छोभी थे, कहोना प्यार है एक गाना होता, आप सुना दीजिए।
0: अच्छा, और बताइए।
1: गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ आपको, एफएम रेनबो का सब श्रोता बंधु को।
0: वाह क्या बात है, और बताइए भाई साहब कैसे हैं?
1: हम तो अच्छे हैं, हम काम पर है।
0: अच्छा, अभी
1: काम करता है?
0: क्या बात है, अभी तक काम कर रहे हैं?
1: हाँ, हम काम कर रहे हैं, आपका अनुष्ठान सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, मतलब कितने बजे तक ये काम चलेगा?
1: हमारा रात 10 बजे तक चलेगा।
0: वाह,
1: और आपका रेनबो का 7 है, 10 बजे तक।
0: ठीक है, चलिए वैसे रेनबो के साथ चलिए, ठीक है 10 बजे तक रहिए, कोशिश कीजिए और भी सुनने का, है ना?
1: नमस्ते दादा।
0: नमस्ते। कॉलर फ्रेंड की फरमाइश पर ये प्यारा सा नगमा, और इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। अगली फरमाइश के लिए नंबर है हमारा 2213-1341, 2213-1341, और इंतजार कर रहा है आपके फोन कॉल्स का आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका।

0: दोस्तों अभी भी मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2-3 घंटे कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। कृपया सावधानी बरतें।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: चलिए भाई कॉलर फ्रेंड आ गए हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग रोशन जी।
0: गुड इवनिंग,
1: मैं लश्कर बात कर रहा हूँ दक्षिण सांकरी हावड़ा से।
0: बोलिए लश्कर जी, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
0: आवाज तो थोड़ी डाउन डाउन लग रही है आपकी।
1: आपका प्रोग्राम सुनता है तो आवाज बहुत बढ़िया हो जाता है।
0: लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक तो डाउन डाउन लग रही है आपकी आवाज।
1: मैं बोलूं?
0: हाँ।
1: मजा आ जाता है जब तुम्हारी प्रोग्राम लाइन मिल जाते हैं।
0: क्या बात है भाई, आज लिख के नहीं रखा क्या?
1: सुकून मिल जाता है जब तुम्हारे पास होती है, तुमसे बात होती है।
0: मैं समझ गया, आज आपने लिख के नहीं रखा है, याद करके रखा है, जो आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं ना।
1: ना तो आप तो बना है, बोलता है जो किसी को डुप्लीकेट करता है।
0: नहीं नहीं, आप लिखिए, अच्छा है, लिखना अच्छी बात है, लिख कर रखिए, उसमें क्या है, कुछ दिनों में आप बोलने भी लग जाएंगे, इंस्टेंट बोलने लग जाएंगे, है ना।
1: ठीक है, मुझे बोलने से मौका दीजिए।
0: हाँ एकदम एकदम, बताइए।
1: जब सुनता हुआ आपका प्रोग्राम का खूबसूरत पूरा प्रोग्राम, मेरे लिए वही पूरा कायनात होती है।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मनोजन जी, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है?
1: बोलो।
0: अच्छा अभी और बाकी है क्या?
1: क्या बात है, क्या बात है, बोलिए बोलिए।
0: अभी और कुछ बोलना है आपको?
1: हाँ बोलना तो बहुत कुछ है।
0: बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए।
1: बहुत सारे श्रोता है
0: जी जी,
1: हमारे ऊपर गुस्सा करेगा।
0: ओह ऐसा भी होता है?
1: हाँ, इसीलिए मैं फटाफट बोल देता हूँ। खटखट फिल्म से आपके आ जाने से ये गाना प्लीज सुना दीजिए। अजीज साधना संग्राम, साधना सरगम की आवाज में, म्यूजिक राजस्थान लड़ी से सिंधी बार।
0: क्या बात है।
1: और गोविंदा नीलम का
0: सुनवाते हैं।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू, थैंक यू,
1: खुश रहे, मस्त रहे।
0: गीत सुनवाया मुनीरुद्दीन की पसंद का, और आप भी अगर चाहते हैं अपनी पसंद का गीत सुनना तो डायल कीजिए 2213411 2213 1341। आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है। 9 बजे तक आपका कार्यक्रम छाया लोक आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं और ये फोन नंबर आपके साथ है। फटाफट डायल कीजिए और आइए अपनी पसंद के गीत के साथ। तब तक ये गीत मुनीरुद्दीन की पसंद पर।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

0: भाई कोई ना कोई किसी को याद करता ही रहता है। फिलहाल फोन की बत्ती बता रही कि कोई कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए।
1: हाँ गुड़िया से संदीप दास बोल रहे हैं।
0: संदीप जी कैसे हैं?
1: अच्छा है बहुत।
0: बोलिए क्या करते हैं संदीप जी?
1: अभी तो मैं कुछ नहीं करता क्योंकि मेरा एक्सीडेंट में दो डैमेज हो गया।
0: ओहो ओहो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बताइए।
1: ये कृष्णा कॉटेज से सुना लामा लामा
0: सुनना चाहते हैं।
1: हाँ हाँ कौशल का
0: ठीक है। भाई हमारे कॉलर फ्रेंड परेशान हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये तो उपाय नहीं है, ऐसा उनके साथ एक्सीडेंट हो गया है। तो उनकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं, वैसे वक्त बहुत कम है, शायद ये आखिरी गीत होगा। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी कर ही आपसे आज्ञा लेने को, तो फिलहाल आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारको को यहीं आज्ञा दीजिए, मिलूंगा फिर किसी अगली शाम, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।